0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यूम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: ईटी विन्यो और रेडियो ईटी विन्यो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: ईटी विन्यो और रेडियो ईटी विन्यो और रेडियो
2: एया

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: मिस्टर बेरी म्यूजिक
3: कॉप्टेक
2: टॉपिंग रिकॉर्ड्स.

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: नो इन विन यू डुअन लिम डुअन ट्वेरो ना बेटी इरी इरी इरी के कैन

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो रेडियो रेडियो
2: जिया हॉट सूप म्यूजिक म्यूजिक पेरो पियो टेटामो तो चोयो कोपु काने